सुप्रभातम बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 19 अगस्त 2026, दिन बुधवार, श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी, 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्योदय हुआ है 5:52 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर।

जितनी देर यह जीवन चल रहा है, बंधनों से छुटकारा पालो, और वो संभव होगा तब जब ब्रह्म मिटेंगे। ब्रह्म तब तक नहीं मिट सकते जब तक कि ज्ञान के उजाले के कारण अज्ञानता का अंधकार नहीं मिट जाता।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 14। आज का कार्यक्रम आधारित है संगीतकार रोशन पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड और एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आजय किरनी।
1: सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। आपने ट्यून इन किया है 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता। आज सुनहरे पल में हम उस महान संगीतकार की दास्तान सुनेंगे जिन्होंने खामोशी को सुरों का जामा पहनाया, रोशन लाल नागरथ। 1917 में गुजरांवाला अब पाकिस्तान में जन्मे रोशन जी के पिता चाहते थे कि वो संगीत नहीं कुछ और करे, मगर उनके दिल में एक कसक थी। वो घर से भागकर लखनऊ के मरीज कॉलेज आ गए। वहाँ उन्होंने पंडित एसएन रत्नागर से संगीत की वो बारीकियाँ सीखी जो आगे चल के उनकी पहचान बनी। उनकी जिंदगी का पहला सुनहरा पल तब आया जब केदार शर्मा ने उन्हें मुंबई बुलाया और फिल्म बावरे नैन मिली। इस फिल्म ने उन्हें एक ही रात में सितारा बना दिया।

मुंबई में रोशन साहब का संघर्ष आसान नहीं था। उन्हें एक वक्त दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करनी पड़ी। वही उनकी मुलाकात इरा मोइत्रा जी से हुई, जो एक बेहतरीन गायिका थी। दोनों ने शादी की और इरा जी ने अपने करियर से ज्यादा रोशन साहब के सपनों को सींदा। रोशन जी बहुत नरम दिल थे, कई बार लोग उनका फायदा उठाते थे, पर इरा जी उनकी ढाल बनकर खड़ी रही। संघर्ष के उसी दौर में फिल्म मल्हार आई, जिसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। फिल्म तो नहीं चली, पर संगीत ने धूम मचा दी। संघर्ष के उसी दौर में 1951 में फिल्म आई हम लोग। इस फिल्म ने रोशन साहब को वो पहचान दी जिसके वह हकदार थे। इसका संगीत इतना हिट हुआ कि हर गली में रोशन साहब का नाम गूंजने लगा।

रोशन साहब की जिंदगी का सबसे बड़ा धमाका 1960 में हुआ। उन्हें बरसात की रात मिली। साहिर लुधियानवी की शायरी और रोशन का संगीत, ये एक ऐसा मेल था जिसने फिल्मी कवाली की परिभाषा बदल दी। रोशन साहब कहते थे कि कवाली सिर्फ शोर नहीं, इबादत होनी चाहिए। इस फिल्म की कवाली न कारवां की तलाश है को रिकॉर्ड करने में 12 से 15 घंटे लगे थे, क्योंकि वो हर ताली और हर हरकत को परफेक्ट चाहते थे।

दोस्तों, रोशन साहब इतने काबिल थे पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिलने में बहुत वक्त लगा। 1963 में आई फिल्म ताजमहल, रोशन साहब ने इस फिल्म के लिए संगीत नहीं बल्कि एक अफसाना लिखा था। साहिर साहब के साथ उनकी जोड़ी इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों बिना बोले एक दूसरे की बात समझ जाते थे। ताजमहल के संगीत ने उन्हें वो सम्मान दिलाया जिसके वो हकदार थे। इस फिल्म ने दिखाया कि रोशन जी से बेहतर रोमांटिक और शायराना दुनिया कोई नहीं बना सकता।

लोग समझते थे कि रोशन साहब सिर्फ गंभीर या कवाली वाले गाने बनाते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर के साथ मिलकर उन्होंने ऐसे चुलबुले गाने दिए जो आज भी पार्टी की शान है। रोशन साहब ने दिखाया कि वो सादगी में भी जादू फूंक सकते हैं। मुकेश जी की आवाज को उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म में इस्तेमाल किया वो उनके फन का एक नया पहलू था।

रोशन साहब को राग यमन का बादशाह कहा जाता है। उनका मानना था कि क्लासिकल संगीत ही वो बुनियाद है जिस पर फिल्मी गाना खड़ा होता है। वो अक्सर सुबह सुबह रियाज करते थे और नए सांसों का प्रयोग करते थे। उनकी फिल्म आरती में उन्होंने सारंगी का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया कि सुनने वाले रो पड़े। उनके हर गाने में एक अजीब सी नजाकत होती थी, जैसे रेशम का कोई धागा हो।

लता मंगेशकर जी रोशन साहब को अपना भाई मानती थी। वो कहती थी कि रोशन भैया की धुन गाना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। रोशन साहब लता जी की आवाज के इतने बड़े प्रशंसक थे कि कई बार वो सिर्फ लता जी को ध्यान में रखकर ही धुन बनाते थे। उनका मानना था कि जो मिठास लता की आवाज में है वो किसी साज में नहीं।

दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे कि रोशन साहब का सबसे बड़ा काम क्या है, तो मैं कहूंगी फिल्म चित्रलेखा। इस फिल्म के लिए उन्होंने जो संगीत दिया वो किसी तपस्या से कम नहीं था। मन रे तू कहीं ना धीर धरे, इस गाने को भारत का सबसे बेहतरीन फिल्मी गानों में गिना जाता है। इस गाने में संगीत कम और सुकून ज्यादा है। रोशन जी ने इसे बनाने के लिए कई रातें जाग कर बिताई थी। रोशन साहब को दर्द भरी धुनों का माहिर माना जाता था, लेकिन उन्होंने रोमांटिक गानों में भी जो मिठास घोली उसका कोई जवाब नहीं। फिल्म भीगी रात का संगीत इसका जीता जागता सबूत है। मजरू सुल्तानपुरी के साथ उनकी ये जुगलबंदी इतनी हसीन थी कि आज भी प्रेमी जोड़े इन गानों को गुनगुनाते हैं। इस गाने की धुन इतनी फ्रेश है कि लगता ही नहीं है कि ये 60 के दशक का गाना है।

16 नवंबर 1967, वो एक काली रात थी। रोशन साहब एक पार्टी में गए थे जहां उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। सिर्फ 50 साल की उम्र में वो दुनिया से विदा हो गई। उनका जाना संगीत के एक दौर का अंत था। उनके जाने का गम पूरी इंडस्ट्री को था, मगर वो जाते जाते अपनी विरासत बेटों राकेश और राजेश रोशन के रूप में छोड़ गए, जिन्होंने उनका नाम आज भी जिंदा रखा है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 14। आज का कार्यक्रम आधारित था संगीतकार रोशन पर। कार्यक्रम को एडिट और रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन। सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोटल में नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों कुछ ना कुछ भरपाई होगी। जी मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आवाज की दुनिया के दोस्तों को नरेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी आपने ऐसा सुना है कि झूठ भी प्यारा हो? नहीं सुना ना? तो मैं आज आपको एक प्यारा सा झूठ सुनाता हूं। ये जो प्यारा सा झूठ है, ये मेरे परम मित्र श्री डॉक्टर कौशल किशोर जी ने ही मुझे भेजा है। तो आइए हम सब सुनते हैं इस कहानी को, जिसका शीर्षक है प्यारा झूठ। इसमें बच्चों की मानसिकता देखने को मिलती है। हम समझते कुछ और हैं और हकीकत कुछ और होती है। मैं तो इस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा और ना ही वापस आऊंगा। सपना अपने 10 वर्षीय बेटे सार्थक के शब्द सुनकर सन्न रह गई कि ये क्या कह रहा है, अपनी दादी को बुढ़िया बता रहा है? कहां से सीख रहा है ये इतनी बदतमीजी? सपना सोच रही थी कि बगल के कमरे से सार्थक के चाचा निकले और पूछा, क्या हुआ बेटा? सार्थक ने फिर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। हमेशा डांटती रहती है, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। घर के सब लोग चकित थे। सपना के पति, दो देवर और देवरानी, एक ननद, ससुर और नौकर भी। सार्थक को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी दादी की ही तो थी। पैरों में बहुत दर्द रहता था, पर पोते के प्रेम में कभी शिकायत नहीं करती थी। बहुत प्यार करती थी पोते को, और करती भी क्यों ना, क्योंकि घर का पहला पोता था। पर अचानक सार्थक के मुंह से उनके लिए ऐसे शब्द सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था। रात को खाने पर उसे बहुत समझाया गया, पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। सार्थक के पापा ने तो उसे थप्पड़ भी मार दिया। सबने तय किया कि कल से उसे स्कूल छोड़ने और लेने मां जी नहीं जाएंगी। अगले दिन से कोई और उसे लाने और ले जाने लगा। सपना का मन लेकिन विचलित रहने लगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सपना नाराज भी थी सार्थक से। शाम का समय था। सपना ने दूध गर्म किया और बेटे को देने के लिए ढूंढने लगी। छत पर पहुंच बेटे की बात सुनकर ठिठक गई और छुपकर सुनने लगी। सार्थक अपनी दादी की गोद में अपना सर रखकर कह रहा था, मैं जानता हूं दादी कि मम्मी मुझसे नाराज है, पर मैं क्या करता। इतनी ज्यादा गर्मी में भी वो आपको मुझे लेने भेज देते थे। आपके पैरों में दर्द भी तो रहता है ना? मैंने मम्मी से कहा तो उन्होंने कह दिया कि दादी अपनी मर्जी से जाती हैं। दादी, मैंने झूठ बोला था, बहुत गलत किया, पर आपको परेशानी से बचाने के लिए ही तो किया ना। मुझे कुछ और सूझा नहीं। आप मम्मी से कह दो कि वो मुझे माफ कर दें। सार्थक कहता जा रहा था। सपना के पैर और मन सुन पड़ गए थे। अपने बेटे के झूठ बोलने के पीछे के बड़प्पन को महसूस करके सपना को गर्व हो रहा था। सपना ने दौड़कर सार्थक को गले लगा लिया और बोली, नहीं बेटे, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हम सभी पढ़े लिखे नासमझों को समझाने का यही तरीका ठीक था। शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। तो दोस्तों, ये तो हमारे ऊपर है कि हम अपनी संतान को किस प्रकार के संस्कार देते हैं।
जैसे संस्कार हम अपनी संतान को देंगे वैसे ही आगे उनकी जीवन शैली हो जाएगी। कोशिश कीजिए अपने बच्चों के सामने अच्छी भाषा का प्रयोग करें, अपने बच्चों के सामने झूठ ना बोलें और ऐसी कामना भी रखें कि किसी को भी झूठ ना बोलना पड़े, वाहे वो झूठ चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता पर। आप अपने दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत, अगली कहानी लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

ए रहबर, बता दे किधर की तलाश है तुझे, मुझे लूटने के बाद किसको लूटना है। नमस्ते, मैं हूं रमेश मराठा।

गुलाबी मौसम में खुशबू की तरह महकते रहो, जानते ही मुस्कुराहट है तुम्हारे हुस्न का जेवर, यूं ही मुस्कुराते रहो। जब मोहब्बत तुमसे है तो ख्वाबों के आईने में हमारे बनकर रह जाओगे। आज रहने दीजिए ये गिले शिकवे, आज की शब हम न जाने देंगे, क्योंकि खुशबू बनकर आए हो एक तवील मुद्दत के बाद, यूं ही इस गुलाबी मौसम में महकते रहो हमारी खुशबू बनकर।

के साथ साथ शक्लें बेशक बदल चुकी हों, पर एतबार पहले ही की तरह अटल है। सोबती सही रास्ता दिखाती है और मंजिल का पता भी बताती है, चाहे हम दूर तक चलते रहें, अपने पीछे कदमों के निशान छोड़ ही जाते हैं, यह सोचकर कि कोई मुझे ढूंढ तो ले।

हमसे अक्सर वाबस्ता रहती हैं दर्द की दास्तानें, तुम सुनकर क्या करोगी? जो लिखा है वो मिटाया नहीं जाता है। चुप हो जाते हैं जब जब बीते लम्हों में तुम्हें खोजने की कोशिश करते हैं। ख्वाबों के इस शहर में क्या ये सब कुछ मुमकिन है जो हम तुम्हें पा सकें?

बनाने का हुनर जानता था। उसकी एक मुस्कान के लिए अपनी मुस्कुराहट फिदा करता था।

प्रस्तुत है कार्यक्रम शक्ति का एपिसोड 2, सहयोग कृष्णा, रिकॉर्ड एडिट प्रस्तुत करता नैना, निर्देशन भारत सोपोरी।

नमस्कार, 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका अपना स्टेशन रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। और मैं हूं आपके साथ आपके अपने रेडियो दोस्त नैना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है वादियां गुनगुना रही होंगी और आपका दिल मुस्कुरा रहा होगा। दोस्तों, आज का दिन है बेहद खास, क्योंकि आज हमारे शो शक्तिका का दूसरा एपिसोड आपके रेडियो सेट पर दस्तक दे चुका है। शक्तिका एक ऐसी यात्रा जहां हम बात करते हैं उस अदम्य साहस की जो हर महिला के भीतर छुपा है। आज हम बात करेंगे उस त्रिकोण की जिस पर आज की हर महिला लगातार संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, और वो है संघर्ष, सफलता और संतुलन, यानी कंफ्लिक्ट, सक्सेस एंड बैलेंस। दोस्तों, अक्सर जब हम किसी सफल महिला को देखते हैं तो हम उसकी चमक देखते हैं, उसकी कामयाबी की तालियां सुनते हैं, लेकिन उस चमक के पीछे कितने अंधेरे रास्तों से वो गुजरी है, कितनी रातों की नींद उसने कुर्बान की है, ये शायद ही कोई देख पाता है। संघर्ष कोई कमजोरी नहीं है दोस्तों, संघर्ष तो वो मिट्टी है जिसमें तपकर एक आम लड़की शक्तिका बनती है। चाहे वो घर की चार दीवारी में रहकर पूरे परिवार को संभालने वाली हमारी गृहिणी हो, या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस के कैबिन में बैठकर बड़े फैसले लेने वाली कोई लीडर, संघर्ष दोनों का है, बस रूप अलग है। चलिए इस खूबसूरत सी बात के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहद प्यारे और मोटिवेशनल गाने के साथ। आप सुनिए यह गीत, मैं मिलती हूँ आपसे इसी मोड़ पर।

वेलकम बैक दोस्तों, 90.0 FM रेडियो वितस्ता पर आप सभी सुन रहे थे एक खूबसूरत नगमा, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त नैना, आपके पसंदीदा शो शक्तिका के साथ। अभी गाने पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे संघर्ष की, लेकिन इस संघर्ष का अलग पड़ाव क्या है? सफलता यानी सक्सेस। पर रुकिए, एक महिला के लिए सफलता के क्या मायने हैं? क्या सिर्फ एक ऊंचा पद या बैंक बैलेंस? नहीं, मेरे नजरिए से एक महिला के लिए सबसे बड़ी सफलता है खुद की पहचान बनाना और मर्जी से जीने का अधिकार पाना। आज हमारे समाज में ऐसी कितनी ही मिसालें हैं, कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक लड़कियां आज आसमान छू रही हैं। कोई फाइटर जेट उड़ा रही है तो कोई सेब बगानों को डिजिटल मार्केट से जोड़ रही है। लेकिन जानते हैं इस सफलता की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है संतुलन यानी बैलेंस। दफ्तर की फाइलें भी पूरी चाहिए, घर की चाय भी वक्त पर मिलनी चाहिए, वो माँ भी है, बेटी भी और एक लीडर भी, उसे खुद के लिए भी थोड़ी फुर्सत मिलनी चाहिए। हाँ दोस्तों, वर्क लाइफ बैलेंस सुनने में जितना फैंसी लगता है, निभाने में उतना ही मुश्किल है। अक्सर महिलाएं दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को भूल जाती हैं।

इस संतुलन को बनाने के लिए तीन सुनहरे नियम हमेशा याद रखें। पहला, ना कहना सीखिए। हर काम को खुद अकेले करने की जिम्मेदारी मत लीजिए। काम बांटना कमजोरी नहीं समझदारी है। दूसरा, मी टाइम निकालिए। दिन भर सिर्फ 24 मिनट खुद को दीजिए, चाहे किताब पढ़िए, चाय पीजिए या सिर्फ खामोशी से बैठिए। अपराध बोध को अलविदा कहिए। आप कोई सुपर वुमन नहीं है, आप एक इंसान है। अगर कभी भी घर बिखरा हुआ है या खाना थोड़ा लेट हो गया है तो खुद को कोसना बंद कीजिए। चलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं हूं आपके रेडियो दोस्त नैना और आप सुन रहे हैं शक्ति का एपिसोड 2 सिर्फ रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर। तो मेरी प्यारी सहेलियों, बहनों और माताओं, और हाँ हमारे वो पुरुष श्रोता जो इस वक्त अपनी माँ, बहन या पत्नी के साथ बैठकर ये शो सुन रहे हैं, आप सभी से बस यही गुजारिश है कि अपने घर की शक्तिका को पहचानिए, उनके सपनों को सिर्फ पंख मत दीजिए बल्कि उन्हें उड़ने के लिए थोड़ा सा खुला आसमान भी दीजिए, उनका हाथ थामिए और उनके संघर्ष में साझेदार बनिए। जाने का वक्त हो चला है लेकिन मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ एक बेहद ही खूबसूरत और रूहानी गीत के साथ। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। अपने रेडियो दोस्त नैना को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: सोने से सपने।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम शक्ति का एपिसोड 2, सहयोग कृष्णा, रिकॉर्ड एडिट प्रस्तुत किया नैना ने, निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 11। कार्यक्रम को एडिट रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी।

आप सभी को मेरी तरफ से यानी किरणी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। शुरू के इस सिलसिले सरगम में आपका स्वागत है। आज हम यादों की उन गलियों में घूमने निकले हैं जहां हर गाने एक कहानी सुनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हसीन सफर। शुरुआत करते हैं उस पुकार से जो दिल की गहराइयों से निकली है, फिल्म गुमराह का ये नगमा जिसे साहिर लुधियानवी ने लिखा, रवि जी ने संगीत दिया और महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज दी। गाने के बोल है, आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे।

मोहब्बत की राहों में सहारा ढूंढती एक आवाज, सुनिए फिल्म हमसफर से मजरू सुल्तानपुरी के लफ्ज, असलम शफी का संगीत और आशा भोंसले जी की आवाज में दिल के सहारे कैसे प्यार करें।

वक्त बीतता है पर यादें वही रुक जाती है। साहिर साहब ने लिखा, जावेद ने धुंधी और लता मंगेशकर ने गाया। गाने के बोल है, जाने वाले आजा तेरी याद सताई।

अब पेश है फिल्म साजन का वो धुआंधार गीत जिसे समीर ने पिरोया, नदीम श्रावण ने संगीत दिया और एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाया। और गाने के बोल है, बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम।

0: लीजिए पेश है फिल्म कश्मीर की कली का ये झूमता नगमा, जिसे SH बिहारी ने लिखा, OP नायर की धुन और मोहम्मद रफी का मस्ताना अंदाज। गाने के बोल है, तारीफ करूं क्या उसकी।
1: ये चांद सा रोशन

अगले गाने के बोल है बीगा बीगा प्यार का समा। यह फिल्म सावन से है। इस गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा, श्याम जी घनश्याम जी ने संगीत दिया और मोहम्मद रफी ने गाया।

प्रकृति और प्रेम का एक अनोखा संगम सुनिए फिल्म आदमी और इंसान से। साहिर का कलाम, रवि का म्यूजिक और आवाज दी है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने, और गाने के बोल है नीले पर्वतों की धारा।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। जारी है कार्यक्रम सरगम। अब जिक्र उनका जिन्हें दुनिया पंचम कहती है। फिल्म यादू की बारात से आरडी बर्मन का म्यूजिक, मजरू के बोल और आशा रफी की जुगलबंदी। गाने के बोल है चुरा लिया है तुमने।

जिंदगी का फलसफा और फिल्म आनंद, योगेश जी के अल्फाज, सलील चौधरी की धुन और मुकेश जी की वो दर्द भरी आवाज़। गाने के बोल है कहीं दूर जब दिन ढल जाए।

इश्क में दीवानगी लाजमी है। फिल्म कटी पतंग के लिए आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन ने संगीत दिया और किशोर कुमार ने गाया। गाने के बोल है, प्यार दीवाना होता है।

नजाकत और पुरानी दिल्ली की गलियां, फिल्म पाकीज़ा, संगीत नौशाद साहब का, बोल मजरू सुल्तानपुरी के, और आवाज़ दी है लता जी ने, गाने के बोल है इन्हीं लोगों ने।

कार्यक्रम का अगला गाना है आशिकी का ये सुपरहिट गाना, समीर के बोल, नदीम श्रवण का म्यूजिक और कुमार सानू की आवाज। गाने के बोल है बस एक सनम चाहिए।

0: प्रोग्राम की आखिरी कड़ी में सुनिए एक ऐसा नज़्म जो दिल को छू जाए। फिल्म कभी कभी का गाना साहिर के लफ्ज, खयाम की धुन और मुकेश की आवाज़। गाने के बोल है कभी कभी मेरे दिल में। सुरों का ये कारवां आज यही थमता है। उम्मीद है आपकी रेडियो दोस्त किडनी की ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, संगीत सुनते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 11, जिसमें आपने पुराने हिंदी फिल्मों के गीत सुने। कार्यक्रम को रिकॉर्ड और एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।
1: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
2: और मैं हूं विकास शर्मा।
1: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
2: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
1: निर्माता है विकास शर्मा
2: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
1: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना। Your reacts.

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नूं। शब्द नेक कमाईयां ते इस शब्द नूं आवाज दित्ती है सिंगर बॉबी सिंह जी ने, ते लिखिया है सुरिंदर सरताज जी ने, ते इस शब्द की वीडियो जे एस कलवाना जी ने की है। इस वीडियो च काम करने वाले कलाकार पुनीत खन्ना जी, हरदयाल चंद जी, इंदर राजोसन जी, निर्वैर चहल जी ते होर कलाकार। ते इस शब्द नूं प्रोड्यूस किया है हरबंस लाल खन्ना जी ने, ते तुसी इस शब्द की वीडियो भी देख सकते हो नानक गुरबाणी 20 यूट्यूब चैनल ते जाके। शब्द का आनंद माणो ते सब नूं शेयर करो। थैंक यू सो मच।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد.

सुनिए और सुनाइए, रेडियो दस्ता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही दालच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: सिलसिला चाहतों का यूं ही चलता रहेगा, गीतों का ये मौसम हर पल बदलता रहेगा। जुड़ जाइए हमारे साथ इस रूहानी सफर में, क्योंकि दिलों से दिलों का रابطہ यही बनता रहेगा। नमस्कार और स्वागत। एक बहुत ही खूबसूरत गुनगुनाती शुक्रवार की दोपहर मुबारक हो आप सभी को। मैं हूं आपकी अपनी आरजे किरणी और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद रेडियो स्टेशन रेडियो वितस्ता एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, हम सफर जिंदगी का, आपकी जीवन का प्रवाह। शुक्रवार का दिन है यानी वीकेंड की दस्तक और हमारी आपकी मुलाकात की एक मीठी सी शुरुआत। और जब शुक्रवार आता है तो रेडियो वितस्ता पर एक अलग ही रौनक छा जाती है, क्योंकि आज वक्त है आपके सबसे चहेते शो का।
1: जी हाँ, यानी आपकी फरमाइश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त और होस्ट अनु। किरणी जी, सच कहूँ तो पूरे हफ्ते हमें जिस पल का सबसे बेसब्री से इंतजार रहता है वो यही शुक्रवार है। ये शो सिर्फ एक गानों की लिस्ट नहीं है, यहाँ हम आपकी फरमाइशों को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि आपकी भावनाओं को दिल से महसूस करते हैं। हफ्ते भर हम आपके भेजे हुए संदेशों और फरमाइशों का इंतजार करते हैं ताकि इस शो में उन्हें सिर्फ बजाया ना जाए बल्कि एक नया रूप दिया जा सके।
0: बिल्कुल सही कहा अनु आपने। यहाँ रेडियो वितस्ता पर हम आपकी भेजी हुई हर फरमाइश को केवल एक गाने के रूप में नहीं बजाते बल्कि आपकी उन खूबसूरत भावनाओं को, आपके उस प्यार को बहुत ही स्नेह और खुशनुमा अंदाज में बाकी सभी श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। आपके लिखे हर शब्द में एक अपनापन होता है, एक कहानी होती है जिसे हम इस माइक के जरिए सब तक फैलाने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं।
1: और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि यह कार्यक्रम सिर्फ हमारा नहीं है, यह पूरी तरह से आपका है, आपकी वजह से है और आपके द्वारा भेजी गई फरमाइशों पर आधारित है। आप हैं तो यह महफिल है, आपकी मोहब्बत है तो रेडियो दस्ता की यह धड़कन है। तो चलिए बातों के सिलसिले को यहीं थोड़ा विराम देते हैं और इस प्यार भरे सफर का आगाज करते हैं।
0: तो फिर देर किस बात की, दिल थाम कर बैठिए, अपनी चाय की चुस्कियां लीजिए और इस खुशनुमा माहौल में खो जाइए। अनु, आज के इस बेहद खास शो का आगाज करने के लिए सबसे पहली फरमाइश किसकी तरफ से आई है?
1: किरणी जी, आज हमारी सबसे पहली फरमाइश आई है बीडी फ्लोर मेल अंबाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है आशु कोरी, ये सुनना चाहते हैं फिल्म पति पत्नी और वो से गीत। गीत के बोल हैं लड़की साइकिल वाली। इस गीत को मधुर आवाज दी है महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। आइए सुनते हैं इनका ये मनपसंद गीत।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म प्यासा सावन से। गीत के बोल है मेगा रे मध्य प्रदेश जा रे, और इस गाने की फरमाइश की है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। लीजिए पेश है इन सब का पसंदीदा नगमा।

लेते हैं अगली फरमाइश, सुनाते हैं आपको एक पंजाबी गीत। गीत के बोल हैं, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना। इस गीत को आवाज दी है नुसरत फतेह अली खान साहब ने। इस गीत की फरमाइश आई है महेश नगर अंबाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है मंगत राम। पेश है ये पंजाबी गीत।

दुनिया कितनी हंसी है। इस गाने को अपनी मधुर आवाज से सजाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने। सईद मसरूर के साथ और सुनने वाले श्रोता है शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, इब्राहिम, अदीब, आफिया और सदाम। लीजिए पेश है इन सभी श्रोताओं का ये पसंदीदा नगमा।

से। भेजने वाले श्रोता हैं बंशीलाल संधु, कबीर सिंह संधु, जजबीर सिंह संधु, पवनीत कौर, वरनीत कौर और सारा संधु परिवार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म एक फूल दो माली से गीत। गीत के बोल हैं ये पर्दा हटा दो। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

0: हटा दो।
1: लेते हैं अगला फरमाइशी गाना, जो है फिल्म सुनैना से, जिसके बोल है, इन बहारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। इस गाने को आवाज दी है यशोदास ने और ये फरमाइशी गाना हमारे पास आया है मुंबई से। भेजने वाले श्रोता है गीता, किरण, डॉली, राहुल, मोहन, मंजू, नेहा, मधु और संजीव। लीजिए पेश है इन सभी का ये फरमाइशी गाना।

लेती हूँ अगली फरमाइश जो आई है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से। भेजने वाले श्रोता हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशबद सिंह राहुल। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म बिन फेरे हम तेरे से गीत। गीत के बोल हैं दोस्त बनकर आए हो, दोस्त बनकर ही रहना। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और उषा खन्ना जी ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये पसंदीदा गीत।

0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है गांव जगोड़ी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता है हरिंदीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म देश प्रेम का गाना। गाने के बोल है मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। इस गाने को अपनी खूबसूरत आवाज से सजाया है मोहम्मद रफी ने और साथ ही में इन्होंने हमें इंडिपेंडेंस डे की विशेष भी भेजी है। हमारी तरफ से आप सभी को वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लीजिए पेश है इनका पसंदीदा गीत।
1: नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खन

0: जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। अगर आप भी फरमाइश भेजना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं और हमारा नंबर है 7056413010। नंबर में एक बार फिर दोहरा रही हूँ, 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा।
1: लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और साथ ही मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर। गीत के बोल हैं दिल की ये आरजू थी। इस गीत को आवाज दी है महेंद्र कपूर और सलमा आगा ने। आइए सुनते हैं इनका ये फरमाइशी गीत।

कार्यक्रम के अंतिम गीत की फरमाइश आई है नेपाल से। भेजने वाली श्रोता है सोनी और इन्होंने भेजी है हमारे पास फरमाइश एक नेपाली सॉन्ग की जिसके बोल है साजन मोरी आएगी। लीजिए पेश है ये फरमाइशी गीत।

बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पद

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: शुक्रिया करम मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: नब्बे आशारिया 0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
4: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए मोहम्मद अजीज के दिल छूने वाले गाने हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत सफर का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hum Safar Zindagi Ka.
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विद अस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना। Your

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर अन्नु, लेके आई हूं कार्यक्रम अंबाला डायरीज, जो आधारित होता है अंबाला में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों और साहित्यिक समागम पर। आज आदरणीय श्री ओपी बनमाली जी ने अंशुल मेमोरियल ट्रस्ट एवं रोटरी क्लब इंडस्ट्रियल एरिया के तत्वाधान से बीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में विख्यात कवि मुंशी प्रेम चंद की कहानियों पर आधारित कथा वाचन का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे रेडियो वितस्ता के संस्थापक भरत सुपोरी, विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, साथ ही स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती शालिनी जी, डॉक्टर आर एस ढिल्लो जी, डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी, रोटेरियन श्रीमती चांद चावला जी और अन्य रोटेरियंस एवं शिक्षक उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक रेडियो रिपोर्ट।
1: Late son of Trust President Om Prakash Barmali ji, the Trust aims to provide better quality of life to less privileged section of the society by taking up social services projects mainly in the field of education, culture and health and miscellaneous services in and around Ambala, funded mainly by Barmali family from their own known resources. Trust is managed by Barmali family and like-minded small group of sincere friends with selfless mindset. Thank you, Barmali Trust.
2: Rotary Club Ambala Industrial Area अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर उस सामाजिक सेवा संगठन की एक शाखा है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए 200 से ज्यादा देशों में काम करता है। यह संगठन गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा और महामारी से लड़ने में मदद करता है। यह क्लब अंबाला और उसके आसपास के ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में सामाजिक सेवा को प्रोजेक्ट चलाकर मान पाता है कि सेवा कर रहा है। साहित्य के आकाश के ध्रुव तारा कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानियां केवल शब्द नहीं बल्कि भारतीय समाज का ऐसा जीवंत दर्पण है जिसमें आम आदमी की धड़कनें साफ सुनाई देती है। आइए आज के इस विशेष समीक्षा स्तर पे मैं उनकी एक ऐसी ही अमर कहानी के पत्तों को पलटते हैं और उनके मन को गहराई से समझते हैं।
0: सभी आमंत्रित मेहमानों का स्वागत अभिनंदन किया श्री ओपी बनमाली जी ने मंच से।
3: आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे मित्र श्री भारत सुपोरी जी, हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त, रोटरी क्लब अंबाला इंडस्ट्रियल एरिया के प्रधान रोटेरियन दीक्षित कपूर जी, रोटेरियन अनिल सहगल जी, रोटेरियन लोली चोपड़ा जी, कोषाध्यक्ष रोटेरियन अनिता कपूर जी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रोटेरियन नीता भापर जी, रोटेरियन जान चावला जी, यहाँ के प्रधानाचार्य शालिनी जी, शिक्षिकाएं, शिक्षक और भारत का भविष्य मेरे सामने बैठे प्यारे बच्चे। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों को साहित्य से जोड़ना। लोग साहित्य से कटते जा रहे हैं, नई पीढ़ी विशेष रूप से, और साहित्य से जोड़ने के लिए हमारे मन में आया कि भारत के उपन्यास सम्राट साहित्यकार अमर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी को फोकस करते हुए हम कुछ ऐसा करें जो उनको मालूम रहे, जागरूक रहे, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में मालूम हो। तो हमने कहानी पाठ का कार्यक्रम रखा। ऐसे कार्यक्रम आमतौर पर नहीं किए जाते, तो थोड़ा सा वीक से हटके हमने कार्यक्रम रखा है। इससे पहले के बच्चे कहानियां पढ़े, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बहुत ही संक्षेप में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का जो साहित्य है और दुनिया का जो साहित्य है उसमें हिंदुस्तान का नाम दर्ज करने वाले अगर कोई साहित्यकार हुए हैं तो उसमें अमर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी का नाम बहुत गर्व के साथ लिया जाता है।
0: सरस्वती वंदना बीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नन्हे बच्चों ने प्रस्तुत किया।

0: करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना है।
1: हमारे बीच रेडियो वितस्ता के संस्थापक मुख्य अतिथि श्री भारत सोपोली जी हैं, उनकी सहायिका के बारे में विशेष रूप से बताऊंगा। अन्नु जो मास कम्युनिकेशन से डिग्री याफ्ता हैं और विशेष रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों को कवरेज करने के लिए रखी गई हैं, आज पहली बार इसकी कवरेज के लिए यहाँ आई, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आप इस लाइन में बहुत आगे जाएं, हमारा शुभ आशीर्वाद।
2: कथा वाचन में बच्चों ने जो कहानियां प्रस्तुत की वो है नमक का दरोगा, ईदगाह और दो बैल। प्रस्तुत है बच्चों द्वारा कथा वाचन, एक रिपोर्ट।
3: आदरणीय प्रधानाचार्य जी।

0: नियुक्त होते हैं। पंडित आलोपी दीन एक धनवान व्यक्ति जो अवैध व्यापार में लिप्त है। वंशीधर के पिता एक व्यवहारिक और वृद्ध व्यक्ति जो ऊपरी आय को स्वीकार कर लेने की सलाह देते हैं। कहानी का संक्षिप्त सार। अंग्रेजी शासन के दौरान जब नमक का नया विभाग बना और उस पर रोक लगी तो नमक की चोरी बढ़ गई। काफी कोशिशों के बाद मुंशी वंशीधर को दारोगा का पद मिल ही गया। पद मिलने पर उनके पिता ने उन्हें समझाया कि वह वेतन से ज्यादा ऊपरी आय पर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि वेतन तो पूर्णिमा का चांद है जो घटते घटते लिप्त हो जाता है, जबकि ऊपरी आय बहता हुआ नाला है। एक दिन जब मुंशी वंशीधर सो रहे थे तो उन्हें यमुना नदी के पुल से गाड़ियों के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा तो मुंशी वंशीधर की गाड़ियां अवैध रूप से नमक लेकर जा रही थीं। उन्होंने गाड़ियां रोक दी। पंडित आलोपी दीन को अपनी धन शक्ति पर पूरा विश्वास था। उन्होंने पहले 1,000, फिर 5,000 और फिर 40,000 रुपए की रिश्वत देने तक की कोशिश की, लेकिन वंशीधर ने रिश्वत लेने से मना कर दिया क्योंकि वह एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन जब यह मामला कोर्ट में अदालत में पहुंचा तो पंडित आलोपी दीन की धन शक्ति की वजह से उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और वंशीधर को बहुत बेइज्जत कर उनके पद से हटा दिया गया। जब वह अपने घर पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई और उनकी माता और पत्नी ने उनकी इस ईमानदारी और सच्चाई को मूर्खता कहा। वंशीधर उस समय अकेले पड़ गए, लेकिन वह अपनी सच्चाई से पीछे नहीं हटे। कुछ दिन बाद पंडित आलोपी दीन सजे हुए रथ में बैठकर उनके घर पहुंचे। वंशीधर और उनके पिता चिंतित हो गए कि कहीं वे दोबारा उनकी बेइज्जती करने तो नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे उन्हें अपनी पूरे बंगले की जायदाद का परमानेंट मैनेजर बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने बंगले की पूरी जायदाद का परमानेंट मैनेजर बनाना चाहता हूँ। वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। पंडित आलोपी दीन ने कहा कि मुझे वंशीधर की नहीं, उस नमक के दारोगा की जरूरत है जो उस समय अपनी सच्चाई और ईमानदारी से पीछे नहीं हटा। वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने परमानेंट मैनेजर का पद स्वीकार कर लिया गया। धन्यवाद।
1: आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित अतिथिगण व मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दरोगा की समीक्षा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा एक अद्भुत, प्रसिद्ध व लोकप्रिय कहानी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदारी व अपना काम कर्तव्य प्रायण से करना चाहिए। इस कहानी में केवल ईमानदारी व धन के बीच में टकराव नहीं है, अपितु यह आज के युग में फैल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करती है। इस कहानी में प्रमुख दो पात्र हैं, मुंशी वंशीधर। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति है जो अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करता है, परंतु वह दुनिया के थपेड़ों से अनजान है और अपने असूलों के प्रति अड़िग है। पंडित आलोपोदीन। पंडित आलोपोदीन एक धनवान व्यक्ति है। वह बहुत घमंडी है। वह धन के बल पर कानून व समाज को बेचता है और खरीदता है, पंडित आलोपोदीन। परंतु अंत में वह मुंशी वंशीधर के सामने नतमस्तक हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा शैली अत्यंत सरल व सहज है। इनकी कहानी मुहावरों का प्रयोग किया गया है। कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम धन के बल पर कुछ भी नहीं खरीद सकते, हमें ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, आज के युग में फैल रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। धन्यवाद।
2: और जो कि नमक के दारोगा के बारे में बताने के लिए और नमक की त्योहारों का देश और बच्चों के मन में त्योहारों की उम्मीद और त्योहारों की वेट, बच्चे बड़े खुशी से इंतजार करते हैं। इसी कहानी को बताते हुए हमारे अगले दो छात्र हैं जो ईदगाह कहानी को पेश करने जा रहे हैं। हमारे छात्र हैं अभिनव चौहान क्लास 6 से, जो समीक्षा पेश करेंगे, और साथ में है संजना फ्रॉम 7th क्लास, जो ये कहानी पेश करेंगी। संजना एंड अभिनव।

0: ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हुई कहानी। यह कहानी बाल मनोविज्ञान की है। इससे गरीब घर के बच्चों का जीवन बनता है। हमीद 4-5 साल का अनाथ और दुबला पतला बच्चा है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है और वह मानता है कि मेरे अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, मेरी अम्मी जान अल्लाह मियाँ से मेरे लिए नई चीजें लेने गई हैं। और अमीना हमीद की बूढ़ी दादी है। वह सिलाई कढ़ाई कर जैसे तैसे हमीद और अपना पेट भरती है। रमजान के पूरे 30 दिन रोजों के बाद ईद आई। ईद पर सारा मोहल्ला खुश था और ईद पर सारे अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहे थे, तो हमीद भी मेले में गया। हमीद ने मिठाइयां और खिलौने छोड़कर अपनी दादी के बारे में सोचा कि जब मेरी दादी खाना बनाती है तो उनके तवे पर उंगलियां जल जाती हैं। वह लोहे की दुकान पर गया। लोहे की दुकान पे से चिमटा खरीदा। चिमटा खरीद कर जब वह घर आया तो दादी बहुत गुस्सा करती है। दादी कहती है कि तुम ये क्या लाए हो। जब हमीद ने पूरी बात बताई कि जब दादी आप के तवे पर हाथ चलते तब मेरे से देखा नहीं जाता तो मैं आपके लिए चिमटा लाया। दादी बहुत खुश होती है और गले से लगा लेती है। धन्यवाद।
1: नमस्कार, आज मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी ईदगाह की समीक्षा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बाल मनोविज्ञान पर आधारित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ईदगाह कहानी एक बहुत ही सुंदर और अच्छी कहानी है। इस कहानी को पढ़कर पता चलता है कि उम्र या हालात देखकर इंसान की समझदारी तय नहीं होती। कभी कभी छोटे बच्चे भी मुश्किल हालातों में पहले से समझदार और बड़े सोच वाले बन जाते हैं। कहानी का मुख्य पात्र हामिद है, जो केवल 8 साल का छोटा बच्चा है। उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। उसकी दादी जैसे तैसे थोड़े पैसे जोड़कर दोनों का पेट भरती है। कहानी में ईद का त्योहार आता है और सभी लोग मेले में जाने की तैयारी करते हैं। हामिद भी मेले में जाने के लिए बहुत खुश होता है। हामिद की दादी जैसे तैसे थोड़े पैसे जोड़कर उसे 3 आने देती है ताकि वह भी मेले में जा सके। हामिद अपने दोस्तों के साथ मेले में जाता है। बाकी बच्चे अपने पैसों से खिलौने और मिठाइयां खरीदते हैं, लेकिन हामिद अपने मन पर काबू रखता है और ये सब चीजें नहीं खरीदता। हामिद मेले में से एक बहुत ही जरूरी चीज खरीदता है, रसोई के लिए चिमटा। हामिद ने हमेशा देखा है कि जब भी उसकी दादी तवे पे रोटी सेकती है तब उसकी दादी की उंगलियां जल जाती है, इसे क्योंकि उनके पास चिमटा नहीं था। हामिद को अपनी दादी का दर्द हमेशा याद रहता, इसलिए उसने अपनी इच्छाएं रोककर अपनी दादी के लिए एक काम की चीज खरीदी। इस कहानी को पढ़कर पता चलता है कि सिर्फ 8 साल की उम्र में ही हामिद कितना समझदार बच्चा था। धन्यवाद।
2: हमें बताने के लिए कि बाल मनोवैज्ञानिक क्या क्या चीजें जांचते हैं, हमारे बच्चों के मन में क्या चल रहा है, वो हमें कितना ऑब्जर्व करते हैं, ये कहानी हमें इस चीज को जल्द देती है। यानी हमें बच्चों के सामने अपने आप को उस रूप में पेश करना है जिस रूप में हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग अस मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। नाउ बैल। भारत के किसान बैलों के बिना काम करने बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बैल क्या मानवता के रूपों को भी दर्शाते हैं? ऐसा कुछ बताने के लिए अगली कहानी दो बैलों की कहानी मुंशी प्रेमचंद की द्वारा लिखी हुई और इसे पेश करने आ रहे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स एंजल और समीक्षा बाय आर्य।
3: आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी दो पहलू की कथा को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी दो पहलू की कथा के मुख्य पात्र दो पहल है, जिनका नाम हीरा और मोती है। वह दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत गहरी मित्रता है। वह दोनों अपने मालिक झूरी से भी बहुत प्रेम करते हैं और झूरी भी अपने बैलों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। उसकी पत्नी उसके बैलों को अपने मायके भेज देती है और उनकी इच्छा ना होने के बावजूद भी उन्हें गया के घर जाना पड़ता है। वहां पे उनको अच्छा व्यवहार नहीं मिलता और उनसे बहुत ज्यादा मेहनत कराई जाती है और वो अपने पुराने घर और झूरी को बहुत याद करते हैं। गया के घर वो कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। वहां एक छोटी लड़की उनकी मुश्किलों को समझते हुए उन्हें एक चुपके से रोटियां खिलाती है। इससे उस लड़की के बारे में यह पता चलता है कि उसके मन में पशुओं के प्रति दया और प्रेम है। दोनों बैल गया के घर से भागने में एक बार सफल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। वहां पर और पशु भी भूख और परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। मीरा और मोती खुद परेशानियों में होने के बावजूद दूसरे पशुओं को मदद करने की कोशिश करते हैं। वह दोनों अपनी ताकत से बाड़े की दीवार गिराने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे पशु वहां से बाहर निकल सके। वह मोती इस चीज में बहुत साहस दिखाता है और हीरा उसका साथ देता है। इस पूरे घटनाक्रम से हमें यह पता चलता है कि उन दोनों के बीच दोस्ती और निष्ठा का बहुत बड़ा महत्व था और वह बाद में वहां से जाने के बाद कठिन परिस्थितियों से निकलने के बाद अपने मालिक झूरी के पास पहुंच जाते हैं और झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। धन्यवाद।
0: नमस्कार, मैं आप सभी को इस कहानी की निम्नलिखित समीक्षा बताने जा रही हूँ। यह कहानी केवल दो पशुओं के आपसी प्रेम की कहानी नहीं है, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रशस्त रूपक है। इस कहानी में हीरा और मोती भारत की उस सीधे साधे और सहनशील जनता के प्रतीक हैं, जहां ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता किसी पर। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो जनमानस को प्रतिरोध पर उतरना पड़ता है। इस कहानी में हीरा अत्यंत शांत और अहिंसक प्रवृत्ति का प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ मोती इसके विपरीत अत्यंत उग्र और अहिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। प्रेमचंद इस कहानी में यह दर्शाते हैं कि इन दोनों की स्वतंत्रता की लड़ाई में इन दोनों का अपना अपना योगदान था। कहानी का मूल रूप यह है कि स्वतंत्रता सहजता से नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष, यातनाएं और कड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में पशु मनोविज्ञान का यथायथ चित्रण करते हुए कहा है कि जब हीरा कांजी हाउस में बंधा हुआ था तब मोती के पास भागने का अवसर था, लेकिन वह अपने मित्र को छोड़कर नहीं जाता, वह उसके साथ रहता है। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है, यह अनुभव होता है इनकी सच्ची मित्रता का। भारतीय ग्रामीण जीवन में किसान और उसके मवेशियों का रिश्ता केवल उपयोगितावादी नहीं बल्कि आत्मीय और भावनात्मक होता है। जैसे झूरी अपने बैलों को मवेशी नहीं बल्कि अपने परिवार जैसा मानता है। कांजी हाउस का दृश्य कुछ ऐसा है जैसे कि जेलों में व्यवस्थाएं होती है, जहां असहाय जीवों या नागरिकों को ठूस ठूस कर रखा जाता है और वहां उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की भी अनदेखी की जाती है। अंत में मुंशी प्रेमचंद हम सबको यह दर्शाते हैं, यह सीख देते हैं इस कहानी से कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, हमें हमेशा हिंसा के प्रति अपनी आवाज उठानी चाहिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद।
4: गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता द्वारा बच्चों को संबोधन।
5: आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सपूरी जी, आदरणीय डॉक्टर रतन सिंह जी ढेलो, भाई ओम बनवाली जी, प्राचार्य श्रीमती शालिनी शर्मा जी, रोटेरियन दीक्षित कपूर जी प्रधान, रोटेरियन अनिल सहगल जी, रोटेरियन अनीता कपूर जी, रोटेरियन डोली चोपड़ा जी, रोटेरियन चांद चावला जी, रोटेरियन रीति थापड़ जी, श्री जगपाल राणा जी, अध्यापिकाएं तथा छात्र छात्राएं, नव प्रतिष्ठित साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के अवसर पर अंशुल बनमाली मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट तथा रोटरी क्लब इंडस्ट्रियल एरिया अम्बाला के संयुक्त तत्वावधान में कहानी वाचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं भाई ओपी बनमाली जी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। अंशुल बनमाली चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से पहले भी कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इस कड़ी में आज का यह कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ेगी, उनका उत्साहवर्धन होगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है। जिन बच्चों ने आज कहानी वाचन किया तथा जिन्होंने उन पर टिप्पणियां दी अथवा समीक्षा दी, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जिन्होंने भी कहानियां पढ़ी उनकी प्रस्तुति वास्तव में ही काबिले तारीफ है, बहुत ही सराहनीय है। किसी भी रचना की समीक्षा करना एक बहुत दुस्तर कार्य है, पर आज जिन छात्रों ने कहानियों की समीक्षा की बहुत ही सुंदर एवं सटीक थी। उन्होंने इसमें नील शीर विवेक का परिचय दिया, इनका प्रयास भी अत्यंत सराहनीय रहा, मैं इन्हें भी बधाई देता हूँ। इस अवसर पर प्रेमचंद साहित्य से संबंधित मैं कुछ अपने विचार रख रहा हूँ। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी, जिनकी छाप भारतीय साहित्य पर युगों युगों तक रहने वाली है, उनकी संपूर्ण साहित्य का यदि विश्लेषण किया जाए तो यह तथ्य, यह सच्चाई निकल कर आती है कि उनके हृदय में विद्यमान राष्ट्र प्रेम का अंकन उनके साहित्य में व्यापक धरातल पर हुआ है। उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा थी, जिसका उल्लेख उनके कृतियों में अनेक स्थानों पर मिलता है। उनका अटल विश्वास था कि किसी समाज और राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब वे अपने संस्कृति, सदाचार एवं आदर्श को अपनाने की सदैव चेष्टा करते रहेंगे। प्रेमचंद जी ने अपनी कृतियों में परिवार की छोटे से छोटी समस्या से लेकर समाज और देश की बड़ी से बड़ी समस्या को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। उनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन के अनेक चित्र उकेरे गए हैं। उनकी पात्रों को चित्रित करने की कला अनूठी है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जितने भी पात्रों का चयन किया है वे सभी समाज के चलते फिरते प्राणी हैं। मानव मन के भीतर की प्रवृत्तियों का चित्रांकन प्रेमचंद जी की अपनी खासियत है। पात्रों का अंतर्द्वंद, मन स्थितियों का विश्लेषण और संघर्ष उन्हें जीवंतता प्रदान करता है। पात्रों के कथोपकथन अथवा संवाद किसी भी रचना को दमदार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सरस और स्वाभाविकता अच्छे संवाद के गुण होते हैं। उर्दू के साधारण शब्दों के मेल से बनी जिस भाषा का प्रयोग प्रेमचंद जी ने किया उसमें गति है, प्रवाह है और स्वाभाविकता है। उनके पूरे सृजन में रोचकता का गुण सदैव व्याप्त रहता है। प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी रचनाकार थे। उन्होंने अपने संपूर्ण साहित्य में सेवा, ममता, सहानुभूति, आत्मत्याग, देश प्रेम और उच्च भावनाओं का प्रतिपादन किया है। मुंशी प्रेमचंद जी के संपूर्ण साहित्य में हमारी राष्ट्रीय जागृति का पूरा इतिहास अंकित है। मैं मुंशी प्रेमचंद जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं भाई ओपी बनमाली प्रधान अंशुल बनमाली मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट और रोटरी क्लब के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया।
4: डॉक्टर आर एस ढिल्लो ने बच्चों को संबोधित किया।
6: आपका बेबी स्कूल तो बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल है, यही पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल था, यही मुझे याद है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, यह इंटरनेट चल रहा था, तो अब फिर दोबारा वही बेबी स्कूल स्थापित हो, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। और आपको पता है क्या, कभी आपने इसको क्या कहेंगे, कथा वाचन किया, बहुत अच्छा लगा, एक बच्चा कथा वाचक है और दूसरा बच्चा समीक्षक है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ एक रिमन फाउंडेशन है, उसकी तरफ से हर साल कुछ स्कूलों के टीचर की राइटिंग कॉम्पिटिशन होती है। पिछली बार जो राइटिंग कंपटीशन हुआ मेरे पास वो आई और उसमें से 60% नगर की हुई थी आपके डिजिटल दो बात करते, बड़ी मुश्किल से मैंने वो चेक किए और बाद में हमने फैसला किया कि वो कैंसिल कर, यदि आज तक चोरी बहुत हो गई कहानियों की, पाठ की, कथा की, बड़ी चोरी हो रही है, क्योंकि ईद आ गया ना, ईद ई मेल और कहाँ कहाँ ईद लगती है, कहाँ कहाँ ईद लगती है पता होगा आपको, ईद लगती है ना, वो ऐसे ई बुक्स आ गई है। अब आपको किताब लाइब्रेरी में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट पर जाओ, वहाँ आपको लाइब्रेरी मिलेगी, आप ई बुक्स के बारे में वहां से आप कर सकते हैं, और आजकल जो पीएचडी कर रहे हैं वो यही काम करते हैं, वो वहीं से ही कॉपी कट पेस्ट करते हैं और फीस ले लेते हैं। प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद किस लिपि में लिखते थे, किस लिपि में लिखते थे मुंशी प्रेमचंद, क्या उनकी भाषा हिंदी है, लिपि में लिखते थे, किसमें लिखते थे, देवनागरी में नहीं लिखते थे। दूसरी बात, उनकी भाषा हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी इसलिए कि हर आदमी उसको समझ सके, कठिन भाषा नहीं, वो संस्कृत निष्ट भाषा नहीं, आम आदमी जैसे आप बातचीत करते हो जैसे कहाँ पैदा हुए थे।
4: मुख्य अतिथि भरत सुपोरी ने बच्चों को सराहा और मार्गदर्शन किया।
7: आदरणीय फर्नांडिस जी, अंशुल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, बीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सम्मानित प्रधानाचार्य, शिक्षागण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महान उपन्यासकार और कालजीय जो लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिनका बहुत गहरा असर हम सब भारतवासियों पर और विश्व के सभी जो इनके पढ़ने वाले हैं उन पर है। सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं प्रधानाचार्य जी को कि बच्चों को ऐसे संस्कार इस स्कूल में जो हमारे अंबाला का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना शिक्षण संस्थान है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है इन बच्चों के लिए जिन्होंने यहाँ पर 23 बार आके इन बातों को समझा, इन कहानियों को समझा और इन कहानियों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बच्चों ने नमक का दरोगा कहानी प्रस्तुत की और उसकी समीक्षा भी प्रस्तुत की। ईदगाह, जिसमें हामिद एक ऐसा किरदार है जिसके पास शायद कुछ भी नहीं है पर अपने परिवार के लिए अपने माता पिता उसके ना होते हो या अपने दादी के लिए जो उनका प्यार उनकी जिम्मेदारी छोटे होने के नाते थी, ये हम सबको एक सीख देता है कि हमें अपने माता पिता को हमें अपने जो वृद्धजन है घर में उन्हें सम्मान करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और आज के दौर में इस चीज का बहुत ज्यादा अभाव है। मैं कर्नाली जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आज मुझे इस जगह पर यहाँ पर कुछ बात करने का मौका दिया। मैं आप सभी से बहुत छोटा हूँ, हमारे पास डॉक्टर जनो सर है, हमारे पास जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है या चांद चावला जी है, इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा है जिस वजह से मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाया हूं। उसके बाद दो बैल की कहानी आप बच्चों ने सुनाई और उसकी समीक्षा की। इसमें आप लोगों ने मुझे अपने बचपन की यादों में ले गए। मैं मूलतः कश्मीर से हूं और 36 वर्ष पहले अंबाला की इस कर्मभूमि पर आया था जब हमने सब कुछ पीछे छोड़ सब कुछ खोके एक नए संस्कृति में एक नए आबोहवा में हमने अपनी जिंदगी शुरू की। पर उद्देश्य एक ही रहा कि हम जिंदगी में किस सकारात्मक सोच से आगे बढ़े और अपने समाज के लिए कुछ करें। और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप बच्चों ने जो कहानियां प्रस्तुत की, क्योंकि मैं आवाजों को ज्यादा अच्छे से पहचानता हूं और हमारे पास एंजल और आर्यन आए थे, बाकी दो बच्चों के नाम तो मैंने नोट नहीं किए, जैसे आर्यन की आवाज है या एंजल की आवाज है ऐसे सब बच्चों की आवाज है। ये वो आवाज है जो हमारे देश के लोगों को जागृत कर सकता है। आप सभी के लिए मैं सभी को कहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत करें जो इन संस्कारों को अपने अंदर डाल रहे हैं, अपने घर परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने स्कूल के अपने टीचर्स के बारे में, अपने जो बड़े हैं उनके बारे में सोचते हैं। सोच के तो मैं बहुत कुछ आया हूं पर आप लोगों ने कहानियों में वो सारी चीज बता दी। मैं सभी बच्चों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि समय बदल गया है, दौर डिजिटल हुआ है और डिजिटल दौर में हमारा सबसे क्लोज साथी जो है वो मोबाइल है। मोबाइल के फायदे भी है पर बहुत ज्यादा नुकसान भी है, खास करके बच्चों के बाल मन पर जो बहुत आसानी से कोई चीज पा लेते हैं। जब हम बचपन में थे तो हम मश्क लिखते थे, मैंने स्कूल में उर्दू पढ़ी है और हिंदी मैंने यहां आके सीखे और कोशिश करता हूं कि आज हिंदी में ही आपसे बात करूं, कोशिश करता हूं कि उसका उच्चारण सही हो, पर वो तभी संभव हो सकता है जब आप बार बार उस चीज का एक्सरसाइज करें, उस चीज को पढ़ें। मोबाइल हमें एकदम शीर्ष तक पहुंचाता है पर वो रास्ता नहीं है। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, हमें तरक्की करनी है, हमें अपने आंखों को भी बचाना है तो हमें स्क्रीन टाइम बहुत कम करना पड़ेगा। आप कहानी पढ़िए, आप मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़िए, उन कहानियों को पढ़ने से आपको केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का अनुभव मिलेगा जैसे आप बच्चों ने यहां पर प्रस्तुत किया। बीजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि किताबों को अपना सच्चा मित्र बनाएं। जब आप सोने जा रहे हैं आप 5 मिनट 10 मिनट कोई भी किताब का कोई भी पन्ना जरूर पढ़िए, आप देखिए कि आपको कितनी आत्मिक शांति मिलेगी और बहुत अच्छी नींद भी आ जाएगी और आप अपनी जिंदगी को आगे की और सही दिशा में लेके जाएंगे। संवेदनशील बनिए, जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों को यहां प्रस्तुत किया। हामिद एक ऐसा किरदार जो बहुत ही संवेदनशील अपने परिवार के प्रति है, जिसने अपनी दादी के लिए वो चिमटा खरीदा, अपने लिए कोई खिलौना नहीं खरीदा, सिर्फ ये सोच के कि दादी जब रोटी बनाती है उसकी उंगलियां जल जाती है जब वो रोटी को पलटती है तवे पर। ऐसे संवेदनशील आप बनिए, और मुंशी प्रेमचंद जी हमें ऐसे बहुत सारी चीजें सिखाते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को सक्षम बनाएं और अच्छा बनाएं। अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व कीजिए। देखिए, जो भी आपकी मदर टंग है, जो मां बोली है, जो हम जन्म के बाद हम पहला शब्द जो मां से सुनते हैं वो हमारी मां बोली है। आप अपनी संस्कृति को सबसे ऊपर रखिए, मां बोली को सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि वही आपकी पहचान है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे फेस्टिवल्स है। आने वाले दिनों में हमारी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने हैं। हमारे जो आने वाले दिनों में बहन और भाई का जो रिश्ते का फेस्टिवल है उसको आप बहुत अच्छे से मनाइए। बहन के प्रति अपना स्नेह प्यार रखिए, और बहन सिर्फ वही नहीं जो घर में है, जो हमारा समाज है उसके प्रति भी आप स्नेह रखिए। संस्कार के लिए मैं एक बार फिर आप सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ, प्रधानाचार्य जी को और सारे शिक्षकों को जो सही दिशा इस स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं। आने वाले दिनों में यही बच्चे हमारे देश के स्तंभ बनेंगे, क्योंकि हमारा देश सबसे युवा देश है विश्व में, और आप पर निर्भर है हमारे देश की रूपरेखा। आगे जो भी हमें तरक्की करनी है, अगर आपके पास ये संस्कार है तो आप आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी शिक्षकों को बधाई देता हूं, और बच्चों को साथ साथ इन संस्कारों को ग्रहण करने के लिए, और आपको बार बार ये बताने के लिए कि हम उस धरा से ताल्लुक रखते हैं, हम उस धरा के साथ जुड़े हैं जो भारत माँ कहलाती है। तो भारत माँ के लिए हम सबको अपना योगदान देना जरूरी है। मैं डॉक्टर दिलों सर और हमारे जितने भी मेरे से बड़े हैं उन सभी का आशीर्वाद चाहूंगा, और साथ में हमारी रेडियो हिंदुस्तान जो एफएम 90 अमाला छापनी का एक सामुदायिक रेडियो है, मैं प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों को आप हमारे स्टूडियो भेजिए, इन कहानियों को हम स्टूडियो में रिकॉर्ड करेंगे अच्छी वॉइस क्वालिटी के साथ, और हम अम्बाला के सभी बच्चों तक रेडियो के माध्यम से इन कहानियों को पहुंचाएंगे। और बहुत अच्छी आवाज लिखी है, और मैं चाहता हूं कि ये बच्चे अपने दिल की बात अम्बाला की जनता के साथ करें। स्टूडियो में आके हमारे पास 5 या 6 बच्चे एक बार में आ सकते हैं, क्योंकि जो जगह हमारे पास है, ताकि हम उनकी आवाजों को रिकॉर्ड करें, इन्हें भी पता चले कि अम्बाला छावनी आगे बढ़ रहा है। हमारे अम्बाला छावनी का अपना एक सामुदायिक रेडियो है जिसका स्टूडियो वशिष्ठ नगर में है, और आप आइए देखिए रेडियो स्टेशन कैसे काम करता है, वहां पर क्या होता है, किस तरीके से हम प्रसारण कर लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरे पास इस ग्रुप में अंत में एक चीज कहना चाहूंगा, जो वो लड़कियां हैं जो हमारे पास युवतियां हैं, आप अपना हौसला बनाए रखें, सोचिए आपके सामने अनु है, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में किया है, और आज ये रेडियो विदस्ता में कैजुअल अनाउंसर के तौर पर काम करती है। ये हमेशा नारी की बात करती है, नारी की बात करती है, और मैं चाहता हूं कि अपनी बात आप वहां आगे करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आशीर्वाद भी चाहता हूं, और आप सभी का प्यार भी चाहता हूं, और शिक्षकों और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, आज मुझे इस काबिल समझा, और ये श्रेय मैं अपने माता पिता को और अपने सभी जो जानकार है उनको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं कहूंगा भारत माता की, आप बोलेंगे जय भारत माता की, जोर से भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट, प्रस्तुत एवं रिकॉर्ड किया अन्नू ने, निर्देशन भरत सुपोरी का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 4। प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने। निर्देशन भारत सोपोरी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। लेकर आई हूँ रेट्रो हिट्स का एक और नया अंक। इस अंक में आज हम बात करेंगे विश्वास की, और उसी पर आधारित आपको कुछ गाने भी सुनाएंगे। विश्वास। विश्वास है एक आईना, जो टूट जाए तो मुश्किल है जुड़ना। दिल से जो एक बार उतर जाए तो फिर मुश्किल है संभालना।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 4, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपुरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: अपना बिजनेस एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
3: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

गुलाबी मौसम में खुशबू की तरह महकते रहो, जानते ही मुस्कुराहट है तुम्हारे हुस्न का जेवर, यूं ही मुस्कुराते रहो। जब मोहब्बत तुमसे है तो ख्वाबों के आईने में हमारे बनकर रह जाओगे। आज रहने दीजिए ये गिले शिकवे, आज की शब हम न जाने देंगे, क्योंकि खुशबू बनकर आए हो एक तवील मुद्दत के बाद, यूं ही इस गुलाबी मौसम में महकते रहो हमारी खुशबू बनकर।

साथ साथ शक्लें बेशक बदल चुकी हों, पर एतबार पहले ही की तरह अटल है। सोबतें सही रास्ता दिखाती हैं और मंजिल का पता भी बताती हैं, चाहे हम दूर तक चलते रहें, अपने पीछे कदमों के निशान छोड़ ही जाते हैं, ये सोचकर कि कोई मुझे ढूंढ तो ले।

हमसे अक्सर वाबस्ता रहती हैं दर्द की दास्तानें। तुम सुनकर क्या करोगी? जो लिखा है वो मिटाया नहीं जाता है। चुप हो जाते हैं जब जब बीते लम्हों में तुम्हें खोजने की कोशिश करते हैं। ख्वाबों के इस शहर में क्या ये सब कुछ मुमकिन है जो हम तुम्हें पा सकें?

वो जो चाहती बांटते रहे सरेआम अपनी खुशियों को नीलाम करके, पर इसके बावजूद चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रही, क्योंकि वो जीने का अंदाज जानता था।

जानता था वो दिल बहलाना, कहीं दूर पतंग की डोर पकड़कर खुले आकाश में पतंग को उड़ाने का हुनर जानता था। उसकी एक मुस्कान के लिए अपनी मुस्कुराहट फिदा करता था।

दोस्तों, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आपसे इजाजत।

कुछ पल साथ चले तो सफ़र खास हो गया, आपकी मुस्कान से हर लम्हा खास हो गया। यूं ही जुड़े रहे ये दिलों का सिलसिला, मुलाकात फिर होगी यही है दिल का गिला। तो आज के हमारे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहे हैं। उम्मीद है इन खूबसूरत पलों ने आपके दिन में थोड़ी सी मुस्कान और थोड़ी सी मिठास ज़रूर घोली होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल सुबह ठीक 5:58 पर फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नई सुबह, नई ऊर्जा और कुछ खूबसूरत बातों के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने रेडियो यूं ही जुड़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।